गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो, गुण

ना भाई यो शरीर जजरी है इसनो जार पहुंचे आई काया कंचन ता थी है जा सतगुर ले मिलाए भ्रम माया।

जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अपने गुर मिलिया ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो।

जिन हरते आया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदाता निखोट न कभी जाई आनंद पया।

जिसनो विसरे मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ। जिह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ शरणे जिह नर विसरिया।

सब पवित्र है जो नाम हर राते तिनके कर मंदिर महल सराई सब पवित्र है जिन्नी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाते।

बन खंड जाए जोग तप कीनो, कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी शब्दी मोनी, जम के पटै लिखाया।

ज्ञानी हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सबलाथी फूख फुखानी।

आई किव छूट है हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपाव हो अपना, हम मांगी भगत एकाकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जप्यो हर बचना की, लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जम की बाकी, हर के संत जप्यो।

इस जुग में पवित्र पवित्र पुनीत जात अकार्थ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म के किल विख दुख भागे गुर ज्ञान।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा।

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अमर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप भुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुम्भ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत को ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान इशनान ना

प्रेम गहयो मोहे हर रंग पीन देख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीन तिस ही को गृह।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुण सत गुण दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

नित निफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया। जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया। ऐसा बाजी संसार ना चेत हर नामा खिनमह बिनसै।

तिलंग महला चौथा हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइयां आए मिल गुर

हाथ फलगा, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा।

आई। ऐसा इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई। इस हर धन है

सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभा

भारत्य आवहो सोण हर गुण तीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पाओ भागा अंदर हो दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा।

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसे।

भगत करहै दर्जा पहे, घर दर सच्चा सोई। नानक सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी, शब्द ही सुख होई।

ताज शब्द लिवलाई। आन दिन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा। सब महे रव रहया, सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया, सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाइया।

गुर वचनी मन सहज त्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

जपौ अपने हर भाली, सद बैरागनु हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, आकाश कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करणी क्या कार कमाए, हो मैं मेट चले गुर शब्द समाए।

मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिन की गहन गत कही न जाई सच्चै आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनों

ले जो हर पावै भगवानां। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वड्याई एक परम भव है अविमाना। बिलावल महला तीजा पूरा।

कै मन अभिमान कहत सुनत सभे सुख पावह मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बस हो वड़ पागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

आप ही घट घट आप अलिपना आपते अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

अवर काश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

अमृत पी अमृत तृप्त सया का अचर्ज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कोल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पही दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवां।

रहाओ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

दृष्ट दृष्टाय अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

जरे अंधकूप मह परे ओ प्राणी परम गुबार मोह बंध परे परम गुबार मोह बंध परे। कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढ़ै बाह फरे। बिलावल महला पंजवां मन।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यो प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम

रख रख चरण हर ताल पुरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै अत निर्मल, जिन पिया तिन ही सुख लहिया, मन हठ कर्म करै।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीद नाम संग मनुआ गीद नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

गुरमुख बूझै सो जी होई, अंतर नाम वसै सुख होई। दुआ पर दूजा दुबदा होए, परम पुहलाने जान है दोए।

मिलावा हुआ। चंद सूरज दोए जरे चरागा, चहो कुंत पीतर राखे। दस पाताओ पंच संगीता, एक है पीतर साथे। पिन पिन होए भाव दिखावे, सब हो निरारी पाखे। कर कर

सोए। मानुख का कर रूप न जान, मिलीन माने मान, गुर की हर टेक टिकाए, अवर आसा

फलत फलत होहे दोहें सुहेले। अचर्ज पुरख त्याओ रहाव, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप। बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सबते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म। हर

कमल हर शरण मन तन हर ओही ध्याया आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमरत

भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संत हो गुरमुख दे वडियाई रहाओ सच रहो सदा सह।

मैल गवाई। त्रै गुण अचेत नाम चेत है नाही, बिन नाम है बिन सजाई। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत, त्रै गुण परम फुलाई।

तरह नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

शांत। प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोहे जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया।

बिचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख।

कारण हो भेख निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघाव हो पारे। गुरमुख खोजत भय उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर।

सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रैसत अंगुल वाई कहिय, तिस कहो कवन अधारो।

बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बिचारे।

सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा

शब्द रवै सब घट मेरे हों सबना अंदर जिस है खुआई तिस कौन कहे जिस है दिखाला वाटड़ी तिस है पुलावै कौन जिस है पुलाई पंध सिर तिस है दिखावै कौन महला पहला।

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है मथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगास

पौड़ी। सेजन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता, गुरमुख सच्चा मन वसै सत सौदा कीता, सब किश कर ही माहे।

पौड़ी। जो तद पहाणा जंत सो तद बुझई, जो तद पहाणा जंत सो दरगह सिझई। जिसनो तेरी नजर हो मैं तिस गई, जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई।

पंजवां कबीरा हमरा को नहीं, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हूं के ना है, जिन्हें हो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफल्यो बिरख सुहा।

हर हार हर उड़तारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।